या तुम रख स्त्री रही ए ते चुशी के हे अग्या इवेन गुना ते क्या कंगा अगी दावा प्लम्बिंग ते की दावा ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट ते की दावा इलेक्ट्रिकल सप्लाई ते की दावा इंटीरियर रेनोवेशन इन डिजाइन ते की दावा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ते की दावा बिल्डिंग मेंटेनेंस इके मटेरियल सप्लाई ते की दावा एयर कंडीशनिंग ते की दावा कॉर्पोरेट वेयर और मेकेनिक्स ता ट्रेनिंग सर्विस कैटरिंग सर्विस मैकेनिकल स्पेयर और कंसम्बल्स ते रिपेयर्स ते प्लान मेंटेनेंस ते गैसन के कवा इवन या कुकुमम ये कंपनी को अगे या रजिस्टर इता वोलम आउ हा एलफिरी कॉमन कने अटू के दिवरी कंपनी कने कुना ता कलम वो बल्ट फाउंटेन स्ट्रीट या सी बी डी के किमली कने कुना वन मितंग के हम जगे नंग हकम ता प्रोग्राम के बंसिन के कोमसी तीम ते गेसन को के कम चौला 75 मनी ते गे रे नो सीवा हम ते के कर नम ते प्रोग्राम यन की या वा ते क्रिसी के वला सिंगी चन ते की ता नो ते फिते की को